0: जमुना का बोल राधा बोल को
1: जिंदगी setiap Ahad pukul 5.15 menit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nah.